विनाश करने वाले ने सभी मानस को चैन दिए और चारों परिवार विस्थापित भर है और अब रूपया पर्यावरण भौतिक संभावना चेतित हो गया

ऐसे ही T20 वरीयता में श्रीलंका नौ नेपाल चौदह स्थान में प्रतियोगिता अंतर्गत आईतवार वर्षा का कारण दुईवटा क्वार्टर फाइनल खेल रद्द भएका थिए। पहिलो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने हङकङ को सामना गरेको थियो तर वर्षा ने खेल संभव हुन सकेन। इसी जापान में जारी विश्व एशियन गेम्स अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल र श्रीलंका बीच को तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल वर्षा का कारण रद्द भएको खबर भर्खरै हामीलाई प्राप्त भयो।

0: अनुदान संयुक्त तथा कृषक कानून कार्यक्रम
1: कृषक कृषक संघ कृषि विभाग तथा कृषि सहकारी

विभिन्न आइटम का मौसमी बेमौसमी तरकारी तथा अंगूर चढ़ा चावल तरकारी तथा फल फसल एक पटा

0: गाड़ी पढ़ाई और कमाई को लोग दिखाए बारिश में बिजली उपसा करने का क्रम दिन दिन प्रदर्शन सफा यात्रा व कार्यक्रम की कतई जारी हो सकते विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करोस अपना कार्य सुरक्षित रखोस और अपने शंका लगे तुरंत नजीबे को सुरक्षा करने लगे जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहाँ कल करने नेपाल पहाड़ी एक सुंदर सुंदर हुआ 2013 मानव बेच विकल्प वृद्ध को मिलो 1177 तथा बाल हित मैन 10-9-8 में कल करोस
1: नागरिक सुरक्षित समाज मानव बेच विकल्प वृद्ध समय के साथ
0: हमें मेरे मत रोक सकते मानव बेच विकल्प को जा भारतीय युनेस्को कलाकार इंटरनेशनल नेपालको साझेदारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रत्यक्ष जनहितमा जारी सन्देश
2: सूचना

0: ही पर लाखों तक कमाया उसका बंगला भी कचरा दंड अपने शीर्ष पर हो
1: मेरा सोलह साल कार्य तथा शीर्ष पर को प्रदान करना तो कर ली थी सोलह साल कार्य को दिए गए प्रतिनिधि
0: बांसुरी नगर पालिका नगर कार्य पालिका को कार्यालय बांसुरी पर दिया।

0: सीटर मिशन विद्यासेवा और व्यवसायिक मॉडल अंतर्गत राष्ट्रीय मौके तथा गोहू सुधार केन्द्र सीमित नेपाल एउटा कला सह किसान कृषि सहकारी संस्थान मेसिन 100% अनुदान में उपलब्ध कराइदिएको सीमित नेपाल वाकेको परियोजना अधिकृत विवेक पौडेल एक कार्यक्रम का बीच एउटा कला सह किसान कृषि सहकारी संस्था अध्यक्ष कतिराम खानेवाले मकै लगाएका सीडर मेसिन हस्तान्तरण कर लपेट सहकारी अध्यक्ष कतिराम थारू किसान अथक मेहनत कृषि उपकरण अभाव उत्पादन आधुनिक उपकरण आगमन से किसान श्रम सहज भैया संगम उत्पादन वृद्धि में समय सही पुग्ने अपेक्षा व्यक्त कर अब यहाँ किसान मकई लगाइए सीधा मिशन का सेवा सहकारी मार्फत जो लेखे जानकारी कर नगरपालिका में पुराम प्रस्ताव क्षेत्र का घर टहरा पसंद तथा अन्य संरचना हटेगा होगा। नगर पालिका राधापुर नगर पालिका चार अंतर्गत पुराम प्रस्ताव क्षेत्र में अपन महात्मा लिता नंबर 560 क्षेत्र नंबर 1 से 13 चार जगह का दक्षिण घर निर्माण हुई तथा अलग घर टहरा पसंद टहरा वो और सबको संरचना हटाए संबंधित धनी तथा सरोकार अवलंबन सूचना जारी कर नगर पालिका कुमार पार्वती सूचना प्रकाशित विधायक मेटी ने 3 दिन भित्र संरचना हटा कर उठान खाली कर संबंधित सुझाव अर्ज कर गए समय अवधि भित्र घर टहरा तथा संरचना नहीं हटाए आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर नगरपालिका संरचना हटेगा जारी रहा संघ संरचना हटेगा क्रम अपना सबको खर्च समेत संबंधित व्यक्ति व पक्ष से असुल उत्तर करने नगर पालिका जारी रहा संरचना हटेगा क्रम भविष्य में क्षति और कम दायित्व पर संबंधित व्यक्ति व पक्ष से जिम्मेवारी नगर पालिका स्पष्ट कर
1: ऐतिहासिक विजय दशमी हर्षोल्लास का संगम मनाएगा उद्देश्य से पदयात्रा प्रक्रिया में राष्ट्रीय कलाकार सहित का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कलरिया पर पदयात्रा कलरिया पदयात्रा का आयोजन में ऐना कार्तिक अष्टमी करिया स्थित राधाकृष्ण चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐना पीड़ा को कार्यक्रम में संध्या पांच बजे से शुरू होना आयोजक चलेगा कार्यक्रम में राष्ट्रीय कलाकार एलिना चौहान करण परिया को अंजली अधिकारी सांगीतिक प्रस्तुति रखना उसे का पुत्र और सुखेत का ट्वीट और ज्ञान समेत प्रस्तुत रखना कार्यक्रम संयोजक त्रेन्द्र कुमार पीसी चांद्र भाषा सोमवार पत्रकार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना कई सांस्कृतिक कार्यक्रम बारे जानकारी पाएगा कई आयोजक का अनुसार कार्यक्रम का लाभ करीब 7 से 10 लाख रूपया बजेट अनुमान कहेगा क्लब अध्यक्ष विमल केसी का अनुसार कार्यक्रम से 50 लाख रकम क्लब का अधूरा चीन व्यवस्थित करना परियोजना संग आर्थिक अभाव कारण चीन चाहिए सीधा इच्छुक व्यक्ति पर निःशुल्क जीव सेवा उपलब्ध कराइना योजना महापतिवट सांस्कृतिक कार्यक्रम का 24 फीट का टेन्ट तथा करीब 200 वर्ग फीट का एलईडी स्क्रीन भरना योजना आयोजक सभा दशहरा का अवसर में आयोजना कर कार्यक्रम में स्थानीय स्तर में मनोरंजन संग सांस्कृतिक वातावरण निर्माण करना अपेक्षा आयोजन प्रेम तथा शारीरिक संबंध का झाल में पान का धमकी देते नगद तथा जिंसी सामान वसूल करना आरोप प्रहरी एक महिला मना पकड़ाव करेगा पकड़ाव पड़ने में रामे छाप कर गोकुल गंगा गौपालिका देख प्रमुख का हाल काठमांडू महानगर पालिका 10 र 3 धारा में व्यक्ति 23 वर्षीय सविता श्रेष्ठ रहलबाटी जिला प्रहरी कार्य बांटे सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रदीप सिंह राठौर के अनुसार श्रेष्ठ बैजनाथ गौपालिका देख 32 वर्षीय पुरुष प्रेम तथा शारीरिक संबंध का जाल में पालता निर्मित मुद्दा में फसा देना अति धमकी देख फेरा फेरा नगर तथा चिंची समारे प्रेत का उजड़ी का धर्म अनुसंधान कर श्रेष्ठ आदित्य मार्ग आत्मा पिकला उठाई ना कायम संग्रह पकड़ा उठाई प्रणाली चले लगा कठिना पारे थप अनुसंधान जनाए के बाद कैलकल पानी व आंधी पौखा का कारण बढ़िया ताल गांव पहाड़ी का मखाली 5 से 12% धान पानी में छेती अनुमान पशी का पानी ले धान में छेती पुकाई गए महीना वर्ष का लाख मजा हो निरोगी पीड़ा पशी का छुट्टे छुट्टा का सुरक्षित तरह सिंचाई उसने कारण गांव पहाड़ी का वर्ष बिया मानव प्राथमिक सहयोग का व्यवस्थापन का मशीन राखी का पर्याताल गांव पालिका का कृषि विकास शाखा का प्रमुख कृषि विकास अधिकारी दीपेन्द्र श्रीवास्तव कुशलवादी
2: अनि यस

0: विद्यालय इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रवृत्ति अध्ययन संस्थान नेपालगंज का एम टेक विद्यार्थी कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात एआई धार भाषा सीखने प्रयास शुरू कर विद्यार्थियों का सरकारी गैर सरकारी तथा निजी संस्था का आवश्यकता और समस्या पहचान प्रकृति में अधिकार आधारित 10 परियोजना तैयार कर मध्य धार भाषा में पाठ पढ़ाई बनाई सीखना निर्माण आधारित प्राकृतिक भाषा संशोधन प्रणाली के अलावा परियोजना से एआई हमें थारू भाषा सीखना थारू भाषा में पाठ सृजना का सीखना प्रणाली विकास विद्यालय विद्यार्थी नवन थारू जानकारी वहां के अनुसार थारू भाषा का डिजिटल स्रोत हो भाषिक तथ्यांक पर्याप्त अनुकूलक प्रणाली विकास में पोजिटिव अनुकूलक प्रणाली में थार राणा थारू टमौरा थार लगाये भाषिक उच्चता समेटना प्रयास विद्यालय भाषिक शुद्धता परीक्षण द्वारा थारू भाषा चन्ना मनन का मूल्यांकन करना तैयारी का विश्वविद्यालय का निमित्त प्रमुख तथा टीम डॉक्टर यूरस केसी कक्षा कोठा में सीख र ज्ञान वास्तविक समस्या से चार का समाधान खोजना असीम परियोजना प्रभावकारी बिना प्रक्रिया विद्यार्थियों का स्मार्ट वाला सूचना तथा नागरिक सहभागिता प्रणाली क्यूआर कोड आधिकारिक रेस्टोरेंट अंदर शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण नतीजा व्यवस्थापन डिजिटल नागरिक प्रमाण पत्र को किसान सदस्यता कार्ड प्रमाण प्रणाली लगाये का परियोजना मे तैयार कर एमटेक कंप्यूटर साइंस तथा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम संयोजक सहायक प्राध्यापक प्रकाश गुप्ता के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन बिना पार्टी विश्वविद्यालय में एमटेक कंप्यूटर साइंस और एमटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कई 60 विद्यार्थी अध्ययन प्रभावित आप राष्ट्रीय समाचार का पाले बिंदु से
1: आज दिन को वैश्विक मंत्रिपरिषद का कचहरी का छठो मुख्य निर्णय सार्वजनिक करना सरकार को प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल कचहरी का निर्णय सार्वजनिक कर लगेगा कचहरी मंत्री अमेरिकी सरकार से स्वास्थ्य सेवा सुधार करना प्राप्त महीना 20.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर का अनुदान सहायता स्वीकार करना निर्णय करेगा। पश्चिम का कमला भारकेश्वर नैया सड़क खंड गर्जन खोला वनेक्षी खोला जल विद्युत आयोजन नया सशस्त्र प्रणाली का तैयार शिक्षालय व सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्रों को भव उपयोग कर स्वीकृति के जाने वेगुल्पा अथवा वसु व छाला तथा शिकार जांच

धान के उठाए के बाद तीन बुट्टा चार बुट्टा पांच बुट्टा एक के मोबाइल के

0: स्वतंत्र अर्थ संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा जनहितमा जारी
1: भएपछि गर्भवती मुख्य सड़क खुल्न समय लाग्ने भएपछि

एकदम सुंदर संगे बजैना झाल कहाँ गई एक दूसरे के संगे मिलेना झाल कहाँ गई एकदम सुंदर संगे बजैना झाल कहाँ गई। दस्या दिवाली में आहिर बाहर नाचकुर करे पेट दस्या दिवाली में आहिर बाहर नाचकुर करे पेट मुंडो हुआ में दसना मंजूर इनके ढाल कहाँ गए एकदम मंजा संगे बनेगा झाल कहाँ गए। झुमझरा राम झुमरी कहे जब नाच मछले सीखे झुमझरा राम झुमरी कहे जब नाच मछले सीखे रानी सरंगा नाचे फिर मिलेगा झाल कहाँ गए एकदम मंजा संगे बनेगा झाल कहाँ गए। जोजा गणेश बाग के नाच करे पुरान जमाना में जोजा गणेश बाग के नाच करे पुरान जमाना में सिर्फ संगीत के संग हसीना कमाल कहाँ गए एकदम मंत्रा संगे बसेना झाल कहाँ गए। पुरान बुटो बुटिन के गायल मई घर की पास में पुरान बुटे बुटुन के गायल मई घर के पास में ताल में ताल मिला के बजेना झाल कहाँ गए एकदम मंदा संगी बजेना झाल कहाँ गए एक बसुर के संगसंगी मिलेना झाल कहाँ गए एक बसुर के संगसंगी मिलेना झाल कहाँ गए।

अच्छा जमाना भाई, प्रहरी बकर उठा रहे रवि का विषय में सरकार माथी प्रश्न उठे रहकर सरकार का प्रवक्ता ने उन्हें प्रहरी पत्र व नियंत्रण में नलिए को बड़ी सुरक्षा प्रदान करने को दावी करने का सं आज पत्रकार हमसे ने पूरा करते प्रवक्ता सस्मित पोखरे ने जमाना भाई उन्हें अपरिचित समूह बात धमकी आए को इस बारे प्रहरी ने अनुसंधान बिल को बताया हूँ। असोज दस गते मध्य राति प्रहरी अधिकारी कर्मस्पति रहकर जमाना भाई उठाए काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान टेकुमा लगेका करिब दस घण्टा पछि परिवारको जिम्मा लगाएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। जबरानी अहिलेसम्म यस घटनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। त्यसै त यस घटनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई विधिको शासनको पालनासँग जोडेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जबरा सम्बन्धी घटनाबारे बुझ्न नदिइएको विषयमा आज